पवित्र पावन से जन निर्मला हर के नाम समाए। हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैण सवारा। हर मंदिर में मन लोट है मोया दूजे पाए पारस पीटिए कंचन पिया कीमत कही न जाए। हर मंदिर में हर बसे सर्व निरंतर सोए नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला तीजा पाए पाए जागे से जग जन जगरण करे उमे मेल उतार सदा जागे करे अपना राखे पंच तस्कर काढ़े मारा। मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार्ग हर पाइए मन से कर्म कमाए राव। गुरमुख सहज तुन उपजे दुख उमे बिचों जाए हर नामा हर मन बसे सहजे हर गुण गाए। गुरमति मुख सोने हर क्या उतार एथे उथे सुख कणा जप हर हर उतरे पारा। होमे विच जगरना होवे हर भगतन पवे थाए मन मुख दट हुई ना लहे पाए दूजे कर्म कमाए। त्रिग काणा त्रिग पहनना जिन दूजे पाए प्यार बिस्टा के कीड़े बिस्टा राते मर जमे हुए खुआर। जिनको सतगुर भेटिया तिना बिचों बल जाऊं तिनकी संगत मिल रहा सचे सच समाव। पूरे पागुर पाइए पाए किते न पाया जाए सतगुर ते सहज उपजे हुमे शब्द जलाए। हर सरनाए मन भज मन मेरे सब कुछ करने जोग नानक नाम ना बिसरे जो कुछ करे सो होग। विवास प्रभाती महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मात पिता भाई सतबंता चुगे चोग आनंद सिंह जुगता। उर्ज परियो मन मीठ महारा गुण गाहक मेरे प्राण धारा एक हमारा अंतर जामे तर एका मैं टेक एक की सिर साहा बड़ पुरख स्वामी राम। छल नागन सिंह मेरे टूटन होए गुर के आए झूठी तोहे मुख मीठी खाए कौर आए अमृत नाम मन रिहा काए। लोभ मोह से गई बिकोट गुर कृपाल मोह किन्नी चोट इठ गबारी बहुत कर गाले हम गुर रख लिए कृपाले। काम क्रोध से ठाठ न बनया गुर उपदेश मोह कानी सुनिया जय दिखत महा चंडाल रख लिए अपने गुर गपाल। दस नारी मैं करी हे करे दो आगन गुर के आए हे रसे बिखागन इन संबंधी रसाल जाए हम गुर राखे हर लिवलाए। अमेब स्यों मसलत छोड़े गुर के आए मूर्ख होडे एहू निकार कर कही न पाए गो हम गुर राख लिए लिवलाए। इन लोगन स्यों हम पहे बिराए एक ग्रह में दोए ना खटाए आए प्रभ पहे अंचल लाग करहो तपावस प्रभ सरबागा। प्रभ हस बोले कि ये न्याय सगल दूत मेरी सेवा लाए तू ठाकरे उग्रह सब तेरा कौ नानक गुर किया नवेरा। प्रभाती महला पंजवां मन में क्रोध महाहंकारा अहंकारा पूजा करे।

मजान मारे भगवंता। कबीर चंदन का बिरबा पला, बेड़ियों ठाक पलास। ओ भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। कबीर वास बढ़ाई बुढ़िया, यूं मत डूबो कोए। चंदन के निकटे बसे, वास सुगंध ना होए। कबीर

जल पैरर का परे पान सुपारी खाए, एक सहर के नाम बिना बादे झंपर जाए। कबीर बेड़ा जर जरा फूटे शेख हजार, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार। कबीर हट जरे ज्यों ला करी केस जरे ज्यों कहास, एह जग जरता देख के पियो कबीर उदास। कबीर

क्या जानो किछ हर किया पियो कबीर कबीरा कबीर सुपने हूं बढ़ाए के जे मुख निकसे राम ताते पगसी पाहने मेरे तन को चाम कबीर माटी के हम पूतरे मांस राखे नाओ चार दिन सके पौने पन बड़ बड़ ढूंढते ठाओ कबीर मेहंदी कर कालिया पसाए पसाए।

कबीर देख देख जग ढूंढिया कहु न पाया ठौर जिन हर का नाम न चेत्यो कहां भला ने और कबीर संगत करी

तरह पार सह मन चार। कबीर चतराई अत कनी, हर जप हृदय माई। सूरी ऊपर खेलना, ग्रहता ठाहर नाही। कबीर सोई मुख तन है।

सब देखी ठोक बजाय। मार्ग मोती भी थरे अंधा निकस्यो आय, ज्योत बिना जगदीश

कन हर छाया बरख भरे सरताल चात्रक ज्यों तरसत रहै तिन को कौन हवाल कबीर चक्कई जो निस बिछरै।

अवीर संत की गैल न छोड़िए मार्ग लागा जाओ। पेखत ही पुनीत तो होए फेटत जपिए नाओ। कबीर साकत संग न कीजिए दूर जाइए भाग।

तिस बिन दूसर को नहीं कै सिरजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम।

गैगच परे कुटुंबकै कंठ रगउ राम आए परे धर्म राय के बीचै तुम माताम कबीर साकते सुकर भला रख अच्छा गाव हो साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाव कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे ला करोर चलती बार न कछ मिल्यो लई लंगोटी तोर कबीर वैष्णो हुआ ता क्या भया माला मेली चार बाहर कंचन बारहा पीतर परी पंगार कबीर रोड़ा हुए रो बाट का तज मन का विमान ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान कबीर रोड़ा हुआ ता क्या भया पंथी को दुख दे ऐसा तेरा दास है ज्यों धरणी में खे कबीर खे हुई तो क्या भया जोड़ लागे अंग हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या भया सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए पूज भवन कनकामनी शिखर तजा फहराए ताते भली मधुकरी संत संगुन गाए कबीर पाटन ते उजर भला राम भगत जेठाए राम स्नेही बहुरा जमपुर मेरे पाए कबीर गंग जमन के अंतरे सह सुन के खाट ता कबीर है मटकिया कोजित मुन जन बाट कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभय ओड़ हीरा किसका बापरा पुज है न रतन करोड़ कबीर आए का चंबो देखो हीरा हाट बकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदल जाए कबीरा जहां ज्ञान तै धर्म है जहां टूट तै पाप जहां लोभ तै काल है जहां खिमा तै आप कबीर माया तजी ता क्या भया।

लागती पुहिंग मिल गया परया कलिजे शे। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक अनदेख न लागई ज्यो बास बजाइए हू। कबीर है गए बाहन सगन कान छत्रपति की ना तास पटंतर ना पुजे हर जन की पनिहार। कबीर निरपनारी क्यों निंदिए क्यों हर चेरी को मान हु माग सवारे बिखे कौ सिमरे हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पाई सतगुर बंदी थी कबीर हीरा मन जे आओ मान सुरुवरती। कबीर हर ही राजन जौ हरी ले कह मांड हाट जब ही पाई पारकु तब हीरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरी है स सिमरु नित अमरा पुरबासा करहु हर गया बहु रैबित। कबीर सेवा को दोए फले एक संत को राम राम जुदाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अब

सुख गए पुमलाई, प्रीदा चिंत खटोला बन दुख बिरह विशावन लीप। एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, प्रीदा जित तन बिरहू ना उपजै सो तन जान मसान। प्रीदाई विस गंदला थरिया खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। प्रीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। प्रीदा दर दर वाजे जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल, एहो निदोषा मारिए हम दोषा दा क्या हाल। घड़िए घड़िए मारिए पहरी लह सजाई, सोहेड़ा कलियाल कड़ियाल जों दुखी रहन विहाई। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी देह, जे सौ वरिया जीवना पीतन हो सीखे। फरीदा बार पर आए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू ए वै रख सी जियो शरीर ले। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा बणकै सर लुहार, फरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़ै अंगार। फरीदा इकना आटा गला इकना नाही लोण, अगै गए सिंजा पसन झूटा खासी कौन। पास दमामे छत सिर पीरी छडू रड, जाए सुते जी रान मैं थी अतीमा गड। फरीदा कोठे मंड माड़ियां उसारें दे पी गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पए।

चले मशाइख शेर। फरीदा दो दीवी बलंदे आ मलक बैठा आए, गढ़ लीता कट लुटिया दीवड़े गया बजाए।

गए मूर न आवसी दोजक संधि पाए। महला पंजवा फीदा खाल खलक मै खलक वसै रब माय। मंदा किसनो आखिए जत सिबिन कोई नाही। फरीदा जे दे नाला कपया जे गल कपै चुख। पवन आईती मामले सहान आईती दुख।

ना लगई पल्ले सब किछ पाई रीदा पंख परहुणी दुनी सुहावा भाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज रीदा रात कथूरी वंडिए सुत्या मिले ना पाऊ जना नैन निंदरावले इतना मिलन को आओ रीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करिहा अग महला पंजवा फरीदा पूम रंगावली मंज बसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुमनड़ी दे विरले के पाईन जना प्यारे ने कंधी वहन न टाए तो पी लेखा देव ना जिधर रब रंजाए वहन तदा उंगा करे रीदा डुखा सेती दे गया सोलह सेती रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपर वात लम्मी लम्मी नदी वह कंधी केरा हेत बेड़े नो कपर क्या करे जे पातन रह सुचेत फरीदा गली सो सज्जन भी एक टुंडी नाला तुखा जो माली कारण तना मा पेरी फरीदा तन भौंकना नित नित दुख

आवो संत प्यारे हो, अकाथ की करे कहानी कथ केरी कित द्वारे पाई है। तन मन धन सब सौ गुर

दर्शन परसिय गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामदी नूर अरसो करसो झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहू सतनाम

कैसों करी पुकार, दुख बिसारण सेविया सदा सदा दातार। जियो डरत है अपना कैसों करी पुकार, दुख बिसारण सेविया

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ। सूही महला पंजवा। दर्शन देख जी मां गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए परा मेरा, यह बनंती सुन प्रभ मेरा।

खसम न फिरे चित डिठी हव टंडोल हिक सुबाज ना कोए आओ साजन तू मुख लग मेरा तन

सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जब पूरन होए तामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब

0: यार वे प्रिय वे सखिया मु कही ना दे
1: यार वे एक डू एक चाड़े हाँ किस चेते ही या
0: एक डू एक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख

मनमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ताकी कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत।

खेल गए से पंखनू जो चुंगन दे सिर तल घड़ी के मोहत के चलना खेलन आज के कल जिस तू मे

जाए सच्चा पेड़ मल, बिन गुर प्रीत ना उपजे, बिन गुर प्रीत ना उपजे, हमें मैल ना जाए। मन मेरे शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तोए, बिन

सबै जिन प्रेम कियो तनहीं प्रभु भयो साच कहूं सुन ले वो सबै जिन प्रेम कियो जलो ऐसी री जलो।

जिस प्यारे सोने हो तिसे आके मर चलिए, मन तन आगे राख के ऊबी से करे, सतगुर आगे शीश पेट देओ जे सतगुर सच पावे, जे सतगुर सच पावे। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। जिस प्यारे सियाने हो तिसे आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवन हमारे, एहे कृपा कीजे हमारे।

जोपण तन पछतानी गया सो जोबन गया सो जोबन तन पछतानी गया सो जोबन तन पछतानी तू दाना साहेब सिर मेरा

बिन दर्शन कैसे रहो सनेही, हाँ दोहागन खरी रंजानी, सब कंत है रतिया, मैं दोहागन कित, मैं तन योगन एतड़े, खसम न फेर, मैं तन योगन एतड़े, खसम न फेर। मित्र

मैं छट गवाया। मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया, रंग कसुंभ पुली तो सजन की मैं की मन पौदी, हों तुद बिन अड न लहदे। नानक जी